ओंकार प्रभु घाटे के स्वर में संत अमृत राय की ये मराठी भक्ति रचना आपने सुनी। कार्यक्रम में अब एक गुजराती रचना प्रस्तुत है, स्वर हसमुख मंडालिया का।

हसमुख मंडालिया के स्वर में ये गुजराती पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए आप सुनते हैं काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी के स्वर में संत कबीर दास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं अंजना चटर्जी से संत सूरदास की ये रचना।

इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर भारतीय संगीत। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग विलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन और राग भैरवी में ठुमरी. आज ही कलाकार हैं शिल्पी पाल. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. शिल्पी पाल पहले प्रस्तुत कर रही हैं राग विलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन. तो आइए सुनते हैं राग विलास खानी तोड़ी में ख्याल, कलाकार शिल्पी पाल.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This morning, we first present a Hindustani vocal rendition. Listen to a khayal in Rag Bilas Khani Tori and Thumri in Bhairavi. Our artist this morning, Shilpi Paul. Accompanying on the tabla, Pinaki Chakraborty and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now, listen to a khayal in Rag Bilas Khani Tori and a Thumri in Bhairavi by our artist Shilpi Paul.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग विलास खानी तोड़ी में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थी शिल्पी पाल। शिल्पी पाल अपने गायन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रही हैं राग भैरवी में ठुमरी। तो आइए सुनते हैं ये भैरवी ठुमरी, कलाकार शिल्पी पाल।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप ये भैरवी ठुमरी सुन रहे थे। कलाकार थी शिल्पी पाल। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पिनाकी चक्रवर्ती और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग देशी तोड़ी में बांसुरी वादन। आज के कलाकार हैं सुदीप चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग देशी तोड़ी में बांसुरी वादन, कलाकार सुदीप चट्टोपाध्याय।
1: You are listening to a khayal in Raag Bilas Khani Tori and Tumri in Raag Bhairabi by our artist this morning, Shilpi Paul. Accompanying on the tabla, Pinaki Chakraborty, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Continuing the concert, now listen to a flute recital in Deshi Tori by our next artist this morning, Sudip Chattopadhyay. Accompanying on the tabla, Satyabrata Chattopadhyay. Now, listen to a flute recital in Raag Deshi Tori by our artist Sudip Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग देशी तोड़ी में बांसुरी वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सुदीप चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a flute recital in Raag Deshi Todi by our artist Sudeep Chattopadhyay.

श्रोताओ, अभी आपने सुना सितार पर राग गौड़ सरंग। कलाकार थे संदीप अपटे। आपके साथ तबले पर थे माधव मोड़क। अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सितार पर राग हमीर बिलावल, कलाकार संदीप अपटे। आपके साथ तबले पर है माधव मोड़क।

श्रोताओ अभी आपने सुना सितार पर राग हमीर बिलावल। कलाकार थे संदीप अपटे। आज के सितार वादन के कार्यक्रम में संदीप अपटे द्वारा प्रस्तुत प्रारंभ में आप सुन रहे थे राग गौड़सारंग और अंत में आपने सुना राग हमीर बिलावल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है रोहित प्रसन्न का बांसुरी पर बजाया राग देश. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. Now listen to a flute recited in Rag Desh by Rohit Prasanna. The Vilambit Gat is set to Ek Taal and Drut Gat is set to Teen Taal.

0: और लीजिए अब सुनिए राग मधुवंती। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: नाउ लिसन टू राग मधुवंती। द विलंबित गत इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग मधुवंती सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a flute recital in Rag Madhuvanti by Rohit Prasanna. This program is the presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं सुंदरी वादन। कलाकार है यशवंत जाधव। आपने सुंदरी पर

प्रस्तुत किया राग हंसध्वनि सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुन पर राग हंसध्वनि, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग हंस ध्वनि। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं अभी सुन रहे थे सुंदरी पर राग मदमात सारंग। कलाकार थे यशवंत जाधव। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग दरबारी कनाड़ा पर सुरबहार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे विक्रमजीत दास, आपके साथ पखवाज पर थे गुरुदास घोष। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू सुरबहार रिसाइटल इन द राग दरबारी कनाड़ा। आवर आर्टिस्ट वॉज विक्रमजीत दास। Accompanying our artist on the Pakhavaj was Gurudas Ghosh.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग भैरव पर ख्याल सुनवाएंगे. कलाकार हैं मशकूर अली खान. आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय और हारमोनियम पर हैं देवाशीष अधिकारी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This evening we present Hindustani vocal recital. Listen to a khayal in the rag Bhairab. Our artist is Mashkur Ali Khan. Accompanying him on the tabla is Tarun Roy, and on the harmonium is Debashish Adhikari.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरव पर ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे मशकूर अली खान। आपके साथ तबले पर थे तरुण रॉय और हारमोनियम पर थे देवाशीष अधिकारी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू ख्याल इन द राग भैरव। Our artist was Mashkur Ali Khan. Accompanying him on the tabla was Tarun Roy, and on the harmonium was Debashish Odhikari. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music.

राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में हम सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता का वायलिन युगल वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। एक विशिष्ट संगीत परंपरा में जन्मी ये बहनें सुप्रसिद्ध वायलिन वादक विद्वान A.V. वेंकट नारायण की पौत्रियां हैं, जो संगीत कला निधि मैसूर टी चौदैया के शिष्य थे। इस समृद्ध विरासत ने इनके लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया, किंतु निरंतर साधना और उत्कृष्टता की अनवरत खोज ने इन्हें आज के सफल कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गान कला भूषण H.K. नरसिम्हा मूर्ति तथा विदुषी H.N. राजलक्ष्मी के मार्गदर्शन में और विदुषी पुष्पा श्रीनिवासन, श्री T.K. श्रीनिवासन तथा विख्यात वायलिन वादक विद्वान H.N. भास्कर के सानिध्य में इन्होंने ऐसी शैली विकसित की है जिसमें गहनता और गतिशीलता का सुंदर समन्वय है। आपका संगीत एक अनुभूति है जहां भावपूर्ण अभिव्यक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम होता है। वायलिन पर आपकी सशक्त पकड़ आपकी प्रस्तुति को एक विशिष्ट आयाम देती है, जिससे आपका संगीत अत्यंत भावपूर्ण और आकर्षक बन जाता है।

0: अपनी कला के माध्यम से ये बहनें ऐसा संगीत अनुभव सृजित करती हैं जो श्रोताओं के हृदय को स्पर्श कर जाता है। अपनी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित सिंधु और स्मिता आकाशवाणी बेंगलुरु की ए ग्रेड कलाकार हैं और उन्होंने गायन तथा वायलिन दोनों ही विधाओं में लगातार सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं। आपकी कला को मद्रास म्यूजिक अकादमी, अनन्या युवा पुरस्कार, युवा पुरंदर पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित MS सुबुलक्ष्मी फेलोशिप सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सिंधु और स्मिता केवल कलाकार ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा की संवाहक हैं, जो कर्नाटक संगीत की अमर धरोहर को गरिमा, नवोन्मेष और समर्पण के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of National Program of Music, we bring you violin duet recital by Sindhu Suchetan and H.M. Smita. Born into a distinguished musical lineage, the sisters are the granddaughters of the legendary violinist Vidwan A.V. Venkata Narayana, a direct disciple of Sangeeta Kalanidhi Mysore T. Chaudhaya. This rich inheritance laid a strong foundation, but it is their relentless pursuit of perfection that has shaped them into the accomplished artists they are today. Under the guidance of eminent gurus like Gana Kalabhushana Vidwan H.K. Narasimha Murthy and Vidushi H.N. Rajalakshmi, along with mentorship from Vidushi Pushpa Srinivasan, Sri T.K. Srinivasan and Vidwan H.N. Bhaskar, Sindhu and Smita have honed a style that seamlessly blends depth with dynamism. Their music is a journey where soulful bhava meets technical finesse. Their command over the violin adds a rare dimension, making their performances both immersive and distinctive. The sisters create an experience that resonates deeply with audiences. Recognized for their excellence, Sindhu and Smita are A-grade artists of Akashwani Bengaluru and have consistently earned top honors in both vocal and violin disciplines. Their artistry has been celebrated with prestigious awards, including accolades from the Madras Music Academy, the Ananya Yuva Puraskara, Yuva Purandara Award, and the distinguished MS Subbalakshmi Fellowship. Sindhu and Smita are torchbearers of a legacy, carrying forward the timeless beauty of Carnatic music with grace, innovation and unwavering dedication.
0: आज के इस प्रसारण में आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं B.S. प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव.
1: In tonight's broadcast, they are accompanied on mridangam by B.S. Prashant, घटम by जी ओंकार राव.
0: सिंधु सुचेतन और H.M. स्मिता अपने वायलिन युगल वादन का आरंभ पटनम सुब्रमण्या अय्यर की रचना इराना पाई के साथ कर रही हैं। यह राग तोड़ी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड H.M. स्मिता बिगिन द वायलिन ड्यूएट रिसाइटल विद इराना पाई, अ कंपोजिशन ऑफ पटनम सुब्रमण्या अय्यर इन राग तोड़ी सेट टू आदि ताल।

0: अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वे अब संत त्यागराज की रचना गिरिराज सुता प्रस्तुत करेंगी, जो राग बंगाला तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग दे कॉन्सर्ट दे विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा गिरिराज सुता इन राग बंगाला सेट टू आदि ताल।

0: राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता द्वारा वायलिन युगल वादन सुन रहे हैं। आपके साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं बी एस प्रशांत, घटम पर जी ओंकार राव। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता अब प्रस्तुत करेंगी संत त्यागराज की रचना ललिते, जो राग भैरवी तथा आदिताल पर निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता। दे आर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बी एस प्रशांत, घटम बाय जी ओमकार राव। कंटिन्यूइंग द परफॉर्मेंस, सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट ललिते, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन भैरवी रागा सेट टू आदिताल।

0: सिंधु सुचेतन और एच एम स्मिता प्रस्तुत करेंगी मुत्तु स्वामी दीक्षितर की रचना मीनाक्षी। यह राग पूर्वी कल्याणी में आदि ताल पर निबद्ध है।
1: सिंधु सुचेतन एंड एच एम स्मिता विल नाउ प्रेजेंट मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तु स्वामी दीक्षितर इन राग पूर्वी कल्याणी सेट टू आदि ताल।

0: अभी आपने तानी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर बी एस प्रशांत और घटम पर जी ओंकार राव ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam presented on Mridangam by B.S. Prashant and on Ghatam by G. Omkar Rao.
0: Sindhu Suchetan और H.M. Smita अपने वायलिन युगल वादन का समापन राग देश में तिलाना से करेंगी, जो विद्वान लालगुड़ी जयरामन की रचना है।
1: Sindhu Suchetan and H.M. Smita will conclude their violin duet recital with Tilana in Raag Desh, a composition.

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में सिंधु सुचेतन और एचएम स्मिता का वायलिन युगल वादन संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर बीएस प्रशांत तथा घटम पर जी ओंकार राव।
1: विद दैट वी कंक्लूड वायलिन ड्यूएट रिसाइटल बाय सिंधु सुचेतन एंड एचएम स्मिता इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। दे वर अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय बीएस प्रशांत एंड ऑन घटम बाय जी ओंकार राव।
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से प्रसारित किया गया।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आकाशवाणी बेंगलुरु ब्रॉट टू यू फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल में

अभी आपने सुना कविता खरवंडीकर द्वारा प्रस्तुत राग रामकली। आप साथ तबले पर थे सचिन राजोपाध्य, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कविता खरवंडीकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है घड़िया गिनत जात, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है मन ही मन मुरछाई, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है सुनरी येरी आज मैं का।

श्रोताओ, अभी आपने ना कविता खरवंडीकर द्वारा प्रस्तुत राग पुरिया। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सचिन राजोपाध्य, हारमोनियम पर थे उपेंद्र सहस्रबुद्धे। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर. राग है जौनपुरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ और दो गतें. विलंबित गत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम कुमार मिश्रा. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार है पंडित नरेंद्र नाथ धर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित नरेंद्र नाथ धर से राग रागेश्री में आलाप और दो गतें।

विलंबित गत और द्रुत गत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर, यू विल लिसन राग रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित नरेंद्र नाथ धर। संगत कलाकार थे तबले पर राम कुमार मिश्रा। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग झिंझोटी में आलाप. विलंबित और द्रुतगतें तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital, Rag Jhinjhoti, by Rajiv Verma. First listen to Alap, followed by Vilambit Gat and Drut Gat, which is set to Teen Tal. He is accompanied by Prasun Chadi on Tabla.

0: अभी आप राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग झिझोटी सुन रहे हैं। और अब सुनिए राग नंद में आलाप विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू झिझोटी बाय राजीव वर्मा। नाउ लिसन टू राग नंद। आलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल। इज अकंपनीड बाय प्रसून चैटर्जी ऑन तबला।

0: अभी आप राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग नंद सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग नंद बाय राजीव वर्मा। ही वाज अकंपनीड बाय प्रसून चटर्जी ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत। पूर्णिमा मोडक की गाई प्रस्तुत है कबीर की प्रसिद्ध रचना मन लागो मेरो यार फकीरी में।

हर दिन हर पल भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। आइए सुनते हैं शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की भक्ति रचना।

ये है रागम चैनल डीटीएच, भारतीय संगीत हर दिन हर पल। आइए सुना जाए मलय बनर्जी का गाया मीराबाई का भजन।